0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

ते शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

हुणे कीर्तन गा रहे हो तो सुन रहे हो, अज जाना जो तुम घर च ना रहमत वेखना, इहो ही रहमत थोड़िया थोड़िया कट्ठिया होके बड़ा सुख दिंदियां ने, बड़ी कृपा दिंदियां, खुशियां मिलदियां ने इन्हां रहमतां तों। भोरा भोरा रहमत कट्ठी कीती जांदी, भोरा भोरा पानी तिल तिल तिल तिल कर करके एडे एडे वड्डे भाग हो जांदे ने, वड्डे भागी बंदा बन जांदा, बूंद बूंद ना समुंदर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

ये जन्म सफल होएगा। एक दिन आना और जब कबाड़ खोल देना मेरी ये तीसरी अख खोलो ये भी खुल जानी है, ये सैसरा चक्कर खोलो ये भी खुल जाना है, ये सुषमनी नाड़ी खोलो ये भी खुल जानी है, ये भोले पाच। बड़ी सोहनी कबीर साहब ने बात कही है अपनी बाणी च, वो कहिंदे ने रब नूं ढूंढिया नहीं लभ सकदे तुसी, ओदी कृपा हुंदी है वो मिलदा है, वो किदां कहो कबीर भगत कर पाया भगती करनी पैंदी, भोले पाए मिले रघुराया भोले पा च रहना पैंदा, भोले भाव च चलाकियां चतराइयां नहीं, भोले पा महाराज जी तुही मैनूं मिलना, मैनूं तां रस्ता ही नहीं पता मैं कित्थे जावां, मैनूं तां टिकाणा ही नहीं पता मैं कित्थे जावां।

आवाज मारो मारा इन आ जाओ प्रभु, अही उड़ीक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तेरी यादा आ रही ने, राती सोने हैं। तू ही वेखो सारे, आप बताओ मुझे, आप सब लोग इतना घूमते हो, इतना खाते पीते हो, सब जगह जाते हो, कभी कभी किसी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी शहर जाते हो, कभी घूमते हो फिरते हो, जहाजों की सैर करते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो, शादियों ब्याहों में जाते हो, फिर भी आपका मन उदास है। पूछो क्यों मन उदास है आपका? मन तो खुश होना चाहिए। क्यों उदास है मन? पति आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, फिर भी आपका मन उदास है। क्यों है उदास मन? क्यों अंदर रोने वाला मन है, रोने जैसा मन है? क्यों? ओ बिछड़िया हुआ, बहुत जन्म बिछड़े थे मन नहीं, हे प्रभु बिछड़े हो तो।

दूर करने वास्ते दाता तो ही मैंने अपने चरणों च बुला लिया, मुझे मिलने के लिए मेरी औकात क्या है मैं तुमसे मिल सकूं प्रभु, ये तेरी कृपा है वड्याई, कौन नानक सब तेरी वड्याई, मैनू कौन जानता ये तू ही मैनू बुलाया, संगत बख्शिश की, कहिंदे ने संगत विच रब मिलदा, जिहड़े बंदे दी रोज संगत होण लग पैंदी है उहनूं बार बार संगत मिलदी है ओ इन्ना वडभागी जीव बन जांदा, एक दिन ओ परमात्मा नूं जाके मिल लैंदा। इदां ही रब नूं सारी दुनिया मिली है, वड्डे वड्डे पैगंबर नबी अवतार पहलां उन्होंने लोकां ने संगतां कीतियां, फिर एक दिन परमात्मा दे विच विचर गए। पुछो ते सही इतिहास ते खोल के वेखो, कोई होर तरीका ही नहीं परमात्मा नूं मिलन दा।

नहीं बिरथा जा सकता, मालो माल करके भेजना मेरे महाराज ने। तुम जो घर जाना थोड़े घर भर जाने रहमता नाल, क्यों तुम मेरे गुरु की शरण में बैठे हो, मेरे गुरु ने तो दृष्टि पा के मालो माल कर देना।

चार पौड़ियाँ गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने सुनंत लिखिया ने जपजी साहब जी दे क्यों एक पौड़ी कहती है सुनिए सत संतोख गयान सुनन नाल किनू सुनन नाल उस पार ब्रह्म परमात्मा ने बारे गल करन नाल रब परमात्मा हरी वाहेगुरु ये उस मालक की गल करन नाल सुनिए सत संतोख गयान संतोख आवेगा ज्ञान आवेगा सुख आवेगा सुनिए 68 का इशनान 68 तीर्थ का फल मिलेगा सुनन नाल सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान जिहड़े लोग पढ़ नहीं सकते अनपढ़ नहीं पढ़ सकते उन्होंने पढ़न वाला मान मिलेगा नहीं ने पढ़ते कई बार वो भी मान मिलेगा सुनन नाल पढ़न तो भी चंगा सुनना है सुनिए लागे सहज ध्यान ध्यान लगन लग पे अख बंद करोगे रब ना जुड़ जोगे सुनन नाल हुण सुन ही रहे हो तुसी ते जुड़े कि नहीं जुड़े ध्यान लगन लग पे क्योंकि रब दीआं गल्लां हो रहीआं जिथे रब दीआं गल्लां होणा ते रब आ जांदा फिर अपने नाल जोड़ लैंदा सुनिए लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास सुनन नाल दुख मुकदे ने पाप भी मुकदे ने किन्नू सुनना है उस पार ब्रह्म बारे जिथे ओदी गल हो रही होवे जिथे रब की कथा हो रही होवे जिथे रब की गलबात हो रही होवे उत्थे सुनना है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की मेरे हरी की कोई गलत करे

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

सच्चे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है। नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ। गुरु के शब्द सलाह, और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो। बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए। की समझाइए? गुरु का शब्द सलाह।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ रणवीर, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
0: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं एक खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी। उसके पीछे एक वजह है, खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा अमूमन कम होता है, और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट, और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, इज फीलिंग गुड।
0: ओह, रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?

0: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है ला ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मींस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
1: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आएं, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
0: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
1: ओह ग्रेट ग्रेट, कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
0: बहुत खुशी मिलती थी जब हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है,
1: really nice.
0: नाम है, तो जस्ट nice. वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
1: बयान नहीं किया जा सकता।
0: एग्जैक्टली और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए,
1: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ,
0: पल पल दिल के पास,
1: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 FM। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट, जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021, आरती त्रिवेदी। वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स के एक मीनिंग है, और खासकर जब उस पे म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है, तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है, या बिल्कुल खराब है।
0: तो इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: हाँ जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो?
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं नहीं कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई। मदर, ब्रदर,
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो?
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके,
1: ऑब्वियस सी बात है। और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है और वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं। अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंड सेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं।
0: सॉरी, मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों में वो बात आ ही गई। अच्छा, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया, दीदी मुझे मार दिया, मैंने कहा अभी बताती हूँ, उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड।
1: एग्जैक्टली।
0: देखिए, मैं पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें, तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिसनर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिसनर्स, आप हमारे साथ जुड़ी नहीं, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट, ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत अच्छा।
0: सेम हियर, आई हाय मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरी जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही है तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाय करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाय करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट जो थिंग है, जो समाज का, जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदि होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का, जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको, संस्कार।
0: क्या
1: संस्कार।
0: बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं जाता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है, उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का, कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया है। कि अगर हम सोचो, देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है, मतलब दिस एंड दैट। मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टेक्स्ट कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है. मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में, मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गांव है. और सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं. एंड सी, हमारा जो भारत है उसकी ज्यादातर जो
0: गांव
1: में बसते हैं,
0: right.
1: वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर. सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट. एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट.
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है. और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे. संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ. और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है. हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशंस लगा देते हैं. दैट इज की फॉर देम द फैशन. अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का
0: नाम किया है,
1: बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस.
0: एग्जैक्टली.
1: बट स्टिल देयर आर द, दिस इज द सोसाइटी. सोसाइटी इज लाइक दैट ना, कि इन स्मॉल सिटीज एंड ऑल द पेरेंट्स डोंट अलाउ कि नहीं अभी नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, यू गो फॉर दैट. So that should be stopped.
0: Okay. So listeners, इस बात को अगर मैं conclude करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं. कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें. उनका जो क्षेत्र है, वो जो करना चाहते हैं, उनको करने में आप मदद करें तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे. सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई. आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: धन्यवाद.
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

राम नव दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:05 हो चुके हैं, 5 तारीख है। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दिन की शुरुआत इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। विधानसभा चुनाव नतीजे 2026 की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अच्छी अच्छी बातें होंगी, खास बातें होंगी। खास बातें यूं होंगी कि पूरा भारतवर्ष उस जनादेश को सलाम कर रहा है, उन लोगों को सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है जिन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट डाला। हम सिर्फ साधारण बात करने जा रहे हैं। साधारण बात यही है कि वोट डालना आपका अधिकार है और आप अपने आप को इससे वंचित मत रखिए। आप सरकारों को बदल सकते हैं, आप सरकार को चुन सकते हैं और यही वजह है कि बहुत परिवर्तन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में जो इस बार वोटिंग हुई वो स्वतंत्रता के बाद बहुत अच्छी वोटिंग हुई, बहुत अच्छा यूं कहें कि 1% रहा, जिसकी वजह से बहुत परिवर्तन देखने को मिला। खैर, हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपको मौका मिले आप वोट जरूर डालिएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। फिलहाल मौसम बदल रहा है, बदल गया है तो उस मौसम के बदलते मौसम की वजह से दिक्कतें परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। और आज का मौसम, दिल्ली सहित 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी कुछ हवाएं। IMD यानी कि ये जो विभाग है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की क्या चेतावनी है, क्या अपडेट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। तू मोहब्बत है फ्रॉम द मूवी तेरे नाल लव हो गया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, में हूँ गगन आपके साथ। आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचाल की आवाज में सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल जो आफतें आती हैं, जो दिक्कतें परेशानियां आती हैं, वो भी बड़ी शांति से गुजर जाए, अच्छा लगता है। लेकिन आंधी तूफान जब आ रहा है तो उससे पहले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD अगर आपको पहले से अलर्ट कर रहा है तो सोचिए कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अलर्ट हो गई है, हम कितने अपग्रेडेड होते जा रहे हैं, कितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस सब का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। तो अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का मौसम इस समय तेजी से बदल रहा है और कुछ दिनों पहले तक जो भीषण गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही थी, वहीं कुछ राज्यों में भीषण बारिश और आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग यानी कि IMD का अलर्ट सामने आ रहा है। और 5 मई यानी कि आज यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और इसके साथ साथ हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु और केरल यानी 14 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है। और इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अलर्ट है। और वहीं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली और उससे सटे NCR में 5 मई को मौसम खराब रहेगा, बादल और हल्की बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रह सकता है। और इस तरीके से 5 से 7 मई तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलरामपुर, बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, बदायूं, प्रतापगढ़, अमेठी, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, तो इस तरीके से बहुत सा आपको बचने बचाने की जरूरत है। और खासकर जब बिजली कड़कती है तो वहां सुरक्षित स्थान तलाशिए, वरना दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती है। जनधन हानि ना हो, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। कैलाश खेर की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक, हर गम को भुला दे, कैलाश खेर, है ना। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:33 हो चुके हैं और क्या है अपडेट उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे देखा जाए तो हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो काया है वो निरोगी काया रहेगी। भाई मैं तो ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि हे मालिक मैं हेल्दी रहूँ, मैं मतलब निरोग रहूं। ऐसा हो जाता है जब आप स्पीड में बोलते हैं तो कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है। खैर, कम टू द पॉइंट पर आते हैं तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो खाने पीने का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो खाना खाइए जो आपके शरीर के लिए मुफीद है, लाभकारी है। फास्ट फूड की तरफ आप ना जाएगा और ऑयली फूड से अपने आप को बचा कर रखेगा। गर्मी के मौसम में तो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अदरवाइज दिक्कतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा पानी भरपूर पीजिएगा। पानी वाले फल जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, ये सारे खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत के लिए ये लाभकारी है। एक ट्रेंड चला, उसके बारे में जान लेते हैं। 10,000 कदम चलने से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? डॉक्टर कहते हैं कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप 10,000 कदम चल रहे हैं तो आपके पैरों पर क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि 10,000 कदम चलना अगर आप बना रहे हैं, जो कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। अगर आप ओवरवेट लोगों या बुज़ुर्गों के लिए अचानक से इतने कदम चलने से एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है, तो जिससे होता क्या है, घुटने के कार्टिलेज यानी कि हड्डियों के बीच की कुशनिंग घिसने लगती है। और जोड़ों पर कैसे असर पड़ता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको कोई इंजरी है तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। यदि आपको वॉक के समय घुटनों में सूजन, दर्द या कट कट की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जोड़ों पर लोड आ रहा है और तुरंत डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती 10,000 कदम चलने का गोल पूरा आप ना करें, अदरवाइज दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नॉर्मल आप चलिए, 7,000 से 8,000 कदम आपके लिए काफ़ी हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही मत बरतेगा, और मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जन्नत 2 फिल्म का रब का शुक्राना, मोहित चौहान की आवाज़, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में नौ का 43 मिनट हो चुके हैं। 5 तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं हमारे आसपास और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। खास बात यह है कि बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है जब आप परीक्षा दे लेते हैं कि परिणाम क्या रहेगा, परिणाम कब आएगा, वो डेट कौन सी होगी। जी हाँ, CBSE का 12th का रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी जो डेट है वो एक सामने आ रही है कि 10 से लेकर 15 मई के बीच में इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम सबके सामने आ सकता है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद भागदौड़ शुरू हो जाएगी कि कैसे हम इसको देखें। तो रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड परीक्षा जारी होने के बाद छात्र अपना जो रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और उसके बाद होम पेज में 12वीं बोर्ड रिजल्ट पर आप क्लिक करें। उसके अलावा आप अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर या एडमिट कार्ड ID डालनी होगी। उसके बाद स्क्रीन पर आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा और भागदौड़ शुरू होती है 12th के बाद कि कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सही रहेगी। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग भागदौड़ करते हैं, लेकिन एक छत के नीचे अगर आपको सारी चीजें मिल जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर, यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को, समझने को, पढ़ने को मिलेंगी। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल का

हॉल, कल्चरल एक्टिविटीज, गेम्स की बातें, प्लेसमेंट की बातें, बहुत कुछ। तो जब आप यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आप यही के होकर रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशादा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास का खास है यानी कि उत्तर प्रदेश में आप हैं, हम हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले में आप आते हैं, हम भी आते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपने प्रदेश की, अपने जिले की हम बात ना करें। एक खबर को हमने अच्छी तरीके से सुना है, पढ़ा है कि रैगिंग की बातें बहुत पुरानी हो गई। अच्छी बात है, रैगिंग करना एक गुनाह है, अपराध है, और जब कार्रवाई होती है तो बच्चे का भविष्य अधर में लटक जाता है। आप बातचीत कर सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, अपने जूनियर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसको शारीरिक मानसिक चोट पहुंचाना ये एक अपराध है। एक ऐसी खबर को जब मैं पढ़ रहा था कि हाल फिलहाल में एक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैं नाम नहीं ले रहा, वहां एक ऐसा झगड़ा हुआ, उस बात से हमें सीख ये मिल रही है कि शासन, प्रशासन और जो इस तरीके से जो सामाजिक कार्यों में लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए बच्चा लोग, अगर आप इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो कितनी बड़ी यूं समझिए कि दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती हैं, आपके ऊपर समय खर्च हो रहा है, रुपया खर्च हो रहा है, आपके ऊपर एजुकेशन लोन लिया जा रहा है, और उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो वाकई बहुत दिल दुखता है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते मैं सिर्फ इस बात का मर्म यही निकाल रहा हूं कि रैगिंग करना एक अपराध है, इससे दूर रखिए अपने आप को, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखिए स्कूल का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का। शारदा यूनिवर्सिटी आप सबका इस्तकबाल करती है, इसीलिए कहते हैं कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। बहुत कुछ अच्छा माहौल मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ। वक्त इशारा हो रहा है, मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ। आज गुलशन कुमार जी का बर्थडे है, उनको हम याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों को मौका दिया है, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, उनके संघर्ष को हम कैसे भूल सकते हैं, उनको हम दिल से सलाम करते हैं। वक्त एक छोटी से ब्रेक का और वक्त के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राम राम दोस्त, लाभ सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। मैं हूं गगन आपके साथ लेकर आपका अपना वही कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में दिल से दिल की हार्दिक गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस डर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है? क्या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी? हमारे साथ हैं इस चर्चा में टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। तो सुनीता जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में फिर से जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर भी फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात करी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। आप उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बेटियाँ आपके बेटी की उम्र की हैं, और आप इस बात को सही तरीके से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर एक चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मधुर आवाज आपने सुनी, ये मधुर आवाज है, हमारे साथ है हमारी टीकन भाभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है? टीकन भाभी क्या कहती हैं आप?
2: मेरा सीधा जवाब है नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, जैसे मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पे डाल देना गलत है। विज्ञान यही कहता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वो साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: देखिए, इसीलिए हम टीकन भाभी को अपने इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि टीकन भाभी बड़ी अनुभवी हैं और तथ्यों पर आधारित बातों को आपके सामने लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल मेरा सुनीता जी से है कि बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है?
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सबसे जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और यही वजह है कि बचपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है, पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी वे माँ बनी हैं। एक गवाह तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देता है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत न बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि ये सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घर तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुल के बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेजी पकड़ती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है और माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसीलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं है, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: दोस्तों, ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये जो बाद में देखे वाली चीज है ना, वो होनी नहीं चाहिए। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। यह टीका स्वस्थ बच्ची को इसीलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम से कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: भाई, आगे का सवाल पूछने से पहले मैं आप दोनों की तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, जो कि तथ्यों पर आधारित है। अनुभव के आधार पर हम बातें आप तक, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार आ जाए तो? टीकन देवी, क्या कहेंगे आप?
2: इंजेक्शन लगने के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन या हल्का बुखार, ये कई टीकों में होता रहता है, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: लेकिन भाभी, अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है सुनीता, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: बिल्कुल बहुत सही बात दोस्तों टीकन भाभी ने कही है, और यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तथ्यों पर आधारित बातें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक है कि HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य ये कहता है कि उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। दोस्तों दूसरा मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य कहते हैं कि आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वो मां है। एक और मिथक की बात करते हैं, अभी छोटी है बाद में देखेंगे। तथ्य कहते हैं कि समय पर सुरक्षा का ही महत्व है, 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। अगला मिथक सामने आता है कि मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं है। भाई वैज्ञानिक कहते हैं, तथ्य कहते हैं कि मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है। सुनीता जी आप क्या कहते हैं?
1: जब आप ऐसे एक एक करके बात बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में तो सब गड़बड़ हो जाता है।
2: इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़े में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा मगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: तो उससे कहना कि क्योंकि कुछ बीमारी का बचाव पहले से किया जा सकता है, ये टीका तुम्हें भविष्य में होने वाली एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो ये पूछे कि क्या इससे मेरे पीरियड्स पे असर होगा, तो उसको बता देना कि नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि क्या इससे आगे चलकर मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, तो उसको ये जरूर कहना कि ये सब झूठी अफवाहें हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही टीकन भाभी। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं समझा कर लिया जा रहा है।
1: पर हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे से पूछा भी नहीं जाता है, बस बड़े लोग आपस में ही तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का एक कदम है, उसे अधिकार है ये पूछने का कि ये किस लिए है, ये भी सेहत शिक्षा का ही हिस्सा है।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन भाभी, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की, पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पे डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। फिर वो बोली ठीक है अम्मा अब हम साथ चलेंगे।
2: देखा सुनीता, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर एकदम से आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए, वहाँ तो पीरियड का नाम लेते ही लोग भौंय चढ़ा लेते हैं।
2: बस तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ, स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी ही कम चलेगी।
0: बिल्कुल, अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी

0: महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। दोस्तों, आधिकारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए। दोस्तों,
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। अब हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में तो कभी नहीं सोचा।
2: वही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं करती। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी शरीर की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है ना, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा ऐसा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
0: वाकई बहुत अच्छी बात है सुनीता जी, आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही। दोस्तों, यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूएन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं दोस्तों, पर सच टिकाऊ होता है।

0: और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है। जैसे कि सुनीता जी ने, टीकन जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक बात रखी कि लड़कियों की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है कि ना पूछना ही सबसे बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हो तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: और टीकन भाभी, मैं तो यही कहूंगा कि उनको सुनना होगा सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जी बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है दोस्तों, जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक और बात मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और एक अनुभव के आधार पर दोस्तों, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जब टीकन भाभी, सुनीता जी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों को भी इस प्रकार की भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करें दोस्तों। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा। अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिरी में रखते हैं।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ में चलना चाहिए। तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचेगा।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। नंबर एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। नंबर तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। नंबर चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। नंबर पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। नंबर छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सातवां नंबर, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं। क्यों सुनीता जी?
2: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी।
1: बस सुनीता, ऐसा ही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझा पाना भी है। अब हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत से ही
0: तो लाभ कई। तो श्रोताओं, ये विशेष कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। टीकन भाभी का, सुनीता जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे। 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। सब खुश रहें, निरोग रहें। ऐसे विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रख लें।
1: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
0: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
0: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
1: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
0: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
1: तो सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
0: एस मतलब सीधा,
1: यू मतलब उल्टा,
0: एम मतलब मुट्ठी,
1: ए मतलब अंगूठा,
0: एन मतलब नाखून,
1: के मतलब
0: कलाई।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
0: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: तड़पता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
3: You know, Shiv, it really hurts. Anyway,

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है खेत खलियान। जी हां किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक समसामयिक जानकारी पहुंचती रहे और आपकी जो खेती है वो उन्नत हो, क्योंकि हमको आज के समय के अनुसार अपनी खेती को करना है ताकि खेती घाटे का सौदा ना बन पाए। जो हमारे किसान मित्र खेती के साथ साथ कोई और भी काम करते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती के साथ साथ आपको जो भी अच्छा लगता है व्यवसाय वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना आपसे इतना है कि आप खेती तो करते ही हैं, पशुपालन ज़रूर करें साथ में, क्योंकि खेती से तो हमें 3 महीने में 6 महीने में हमको उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से तो हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे किसान बहन भाई केवल खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि खेती और जो पशु हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, तो खेती भी कीजिए साथ साथ पशु पालन भी करिएगा ताकि कभी भी आपको कोई खेती में घाटा आपको हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं से हो जाए और आपके घर का जो खर्च है वो भी आसानी से चलता रहे। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आज के खेत खलिहान कार्यक्रम में जैसे आपको पता ही है कि हम सरकार की किसी ना किसी योजना के बारे में आपको बताते हैं, तो आज जिस योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना। तो ये क्या है, तो आपको बता दें कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए और देश में फल सब्जी आपूर्ति बेहतर करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बात को लेकर ऑपरेशन ग्रीन मिशन की शुरुआत की गई है। इसका फायदा इतना हुआ है कि राज्यों के विभिन्न बाजारों में सप्लाई बेहतर हुई है। इससे बाजार में फल सब्जी के भाव में उतार चढ़ाव थम गया है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत दो तरह से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहला, किसानों के खेत से फसल को बाजार तक पहुंचाने का ढुलाई खर्च 50% तक सरकार देती है। इससे किसान भाइयों और कारोबारियों पर बोझ कम होता है और बाजार में कीमतें नियंत्रित रहती हैं। और दूसरा, कच्ची फसलों और फलों को बाजार तक पहुंचाने के दौरान वो खराब ना हो जाएं, इसके लिए उन्हें लंबे समय तक सही ढंग से रिजर्व भी रखा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना में पहले केवल 3 सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर को ही जोड़ा गया था, लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना में 22 फसलों को और जोड़ दिया है। यानी कि अब इस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी 25 फसलों को आसानी से बेच सकते हैं और वो भी अच्छे दाम पर। तो किसान भाइयों, आगे भी ऑपरेशन ग्रीन मिशन के बारे में और भी आपको बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सुनवाते हैं एक रागनी, क्योंकि काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि बातचीत भी होती रहे और साथ साथ हमको रागनी भी सुनने को मिलती रहे। तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको सुनवाते हैं हरेंद्र नागर और ज्ञानेंद्र सरधाना से एक रागनी। किस्सा रहेगा।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र नागर और ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी, किस्सा था महाभारत का। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना की। किसानों को फल और सब्जियों के सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना में केवल उन्हीं फसलों को जोड़ा गया है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए फसलों के खराब होने से पहले ही किसानों को फसलों का अच्छा रेट मिल जाता है। इस योजना से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को भी लाभ मिलता है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधा ग्राहकों से जोड़ दिया है। इस योजना में सरकार एफपीओ, मार्केटिंग फेडरेशन, स्वयं सहायता समूह और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को अनुदान देती है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन के लाभ की, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं रविंद्र खालोर, तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

तो किसान मित्रों, अभी आप रविंद्र खालोर से उपदेश सुन रहे थे और उपदेश जो होते हैं कहीं ना कहीं हमें जीने की राह बताते हैं और बहुत कुछ जीवन में सिखाते हैं, बुराइयों से हमको बचाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में ऑपरेशन ग्रीन मिशन की, तो आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत दिलवाना है ताकि हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों को कम दामों में ना बेचना पड़े। ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना के माध्यम से टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फल सब्जियों के अधिक से अधिक उत्पादन करने पर बाजारों में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में किसान भाइयों को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से उन किसानों को भी लाभ मिलता है जो अपने फल सब्जियों को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर या फिर यूं कहें वेयर हाउस में रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है ऑपरेशन ग्रीन मिशन। जितनी भी कृषि संबंधी योजनाएं होती हैं उनका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाना ही होगा। वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उनसे आप बातचीत कीजिएगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही ऑपरेशन ग्रीन मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और रागिनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। किस्सा रहेगा रामायण का।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी, किस्सा था रामायण का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

दोस्तों समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर और समय बदलते सज्जनों लगे ना कोई देर। मेहरबानों सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज उसके ललाट से वो ज्वाला दहक रही है कि जिसके आगे हमारी एक न चली। मेहरबानों यमराज आश्चर्य में पड़ गए, वो कौन वीर है यमलोक में? मेरे मेहरबानों सत्यवान आखिरी बातें अपनी ब्याही से कर रहा था। मेरे मरने के बाद अगर तुझे मुझसे प्यार है तो सती हो जाना और स्वर्ग लोक में आके मेल मिलाना, और सती ना होना तो मेरे मरने के बाद जप गायत्री मंत्र कराना, गौ माता का दूध जप में अवश्य रखना। मेरे मेहरबानों इतने ही में यमराज क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सावित्री हाथ जोड़ के यमराज के सामने खड़ी हो जाती है, महाराज मुझे विधवा करके मत जाओ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
2: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
2: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर
2: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर,

हक की बातें हो रही हैं और उन्हीं के संबंध में लगातार बातें हम यहां से आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी क्रम में हमें दूसरे स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है। आइए अब हम सुनते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत ये

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शूरवीर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की हिंसा को नौ कार्यक्रम के नए भाग में। और इस प्रोग्राम में मेरी सहयोगी है ममता जी। नमस्कार ममता जी। ममता जी, अरे ममता जी, किन ख्यालों में खोई हैं आप?
1: ओह हाँ हाँ, नमस्कार शूरवीर जी, सॉरी वो मैं ना सुन नहीं पाई आपको।
0: सुन तो लिया था ममता जी आपने, पर गौर नहीं किया कि कोई कुछ कह रहा है, क्यों?
1: हाँ बस यही समझ लीजिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे क्या कह रहे थे आप?
0: उसकी अब जरूरत नहीं, पर मैं आपके इस तरह के अजीब व्यवहार को समझ गया हूँ कि आपके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है।
1: वैसे ऐसा तो कुछ खास नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी।
0: अच्छा, आप तो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। ममता जी, कभी तो इस दिमाग को आराम दीजिए।
1: शूरवीर जी, आराम तो तभी मिल सकता है जब हम इस समाज से कट जाएं, और जब तक समाज के बीच में हैं तब तक अपने समाज की चिंता करने का दायित्व तो हम युवाओं के कंधे पर ही तो है।
0: हाँ, पर सोच क्या रही थी?
1: शूरवीर जी, मैं सोच रही थी कि आखिर महिलाएं हिंसा का शिकार क्यों होती हैं, जब हम आज ये मान बैठे हैं कि महिला हो या पुरुष, हर चीज में दोनों समान हैं, फिर हिंसा केवल महिलाओं के साथ क्यों?
0: ममता जी, मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, और बचपन से ही एक लड़की के जहन में ये बात डाली जाती है कि वो कमजोर है और उसे सबसे दब के रहना है, जो कि कहीं ना कहीं उसके साथ होने वाली हिंसा की चुप्पी का कारण होती है।
1: हाँ, और कुछ कारण बनती है हमारी परंपरागत और रूढ़िवादी सोच, जो महिलाओं को हमेशा से ये कहती है कि पति तो परमेश्वर होता है, वो चाहे जो भी हो जैसा भी हो उसकी बात नहीं टालनी चाहिए, उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, और भी ना जाने क्या क्या।
0: फिर चाहे वही परमेश्वर समझा जाने वाला पति अपनी पत्नी को सम्मान न देता हो या उसके साथ हिंसा करता हो।
1: दोस्तों आइए अब मिलवाते हैं आपको समुदाय के लोगों से और जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में।
2: महिलाओं के साथ हिंसा का महत्वपूर्ण जो विषय होता है वह होता है उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो पाना। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है, या कह सकते हैं कि अपने पति पर या अपने ससुराल पक्ष पर ज़्यादा निर्भर होती हैं। इस वजह से भी वह हिंसा का शिकार होती हैं।
3: महिला हिंसा एक ही कि मतलब महिलाओं को प्रताड़ित हुई कि अपमान करनु होगी। सबसे पहले तो यह यानी कि एक वही सी होंगी, मतलब अगर हमारी सोच का वैसे कई, अगर सोच हमारी कई इंसान की सही नहीं तो सबसे मीन हुई पहले। अगर जे की सोच अच्छी हो तो हमेशा महिलाओं की इज्जत कर दो, अखबार में होगी, टीवी में होगी, कई चीज़ सुनने के मिलने की कि मतलब दहेज का पड़ती हुएगी कि कई लड़की दहेज नहीं ले आई छा कि नहीं, कोई शराबी वगैरह या शराब पी के मारपीट हुई जानी हो जाती मारपीट।
4: मेरा नाम गोदाम्बरी देवी। हिंसा या नुकतान हुई हो तो नहीं चाहे, महिलाओं की दगड़े ना कुछ हुई हो नहीं चाहे, भेदभाव कुछ नहीं चाहे हुई, पर पता नहीं लोग की क्या समझ दू, पर आजकल यू के सब अगाड़ी हिंसा का शिकार जो ही कोई सहारा भी नहीं, पर यू की नहीं चाहे डर हो, चाहे आदमी कमाण लगे हो चाहे नहीं कमाण लगे हो, यू तो कोई नहीं के हाथ खोटा औरत का भी आदमी का भी, जब मैं भी कमाण लगे हो तू भी कमाण लगे तो मैं दबो की भाई और की दबो मैं तुझे देखी कहें, चाहे तू मेरे पति की नहीं है ना, आज जब पति डरावना लगे हो तो तू अपड़ खा मैं अपड़ खान, क्योंकि हाथ खोटा मैं अभी तुम अभी छीन देना। और रह बात बच्चों की, बच्चा तेरा भी मेरा भी ले रख, अगर चार बच्चा कहेगा दुई तो रख दुई मैं रख लू, तू भी पाल सकू मैं भी पाल सकती, अंत छनी की तू ही सकू पाल के।
5: लेकिन अधिकतर जो महिलाएं होनी छन मतलब आसानी से शिकार के लिए होनी छन आपका देखने से,
4: क्योंकि तो अपनी कमजोरी रहनी, क्योंकि ये कमजोर रहना कि मैं नहीं कर सकू कुछ की नहीं कर सकू, करियो छेन दो ना हाथ पैर तो आदमी भी देना और ती महिलाएं भी देना करियो छेन दो।

0: पर या कमी अपड़ी क्योंकि कमजोर जो भीतर बैठे कमजोर होंगे कि हार मैं इन्नी कर ही सकदो पर आ गलती तय की है वो पुरुष संतान दबाने दबाने ती वो देख लिया ना कि इनकी कमजोरी ई मैं जख बिटे सको तक बिटे दबो तो यहाँ लेके गलती खुद हम ही मांग रहा थी।
1: आमतौर पर महिलाएं अपने साथ होने वाली हिंसा को आसानी से सहन कर लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह इसी को अपनी किस्मत मान लेती है। हर कोई यह कहता है कि क्या पता मेरी किस्मत में यही लिखा हो। इस वजह से वह खुद कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। अधिकांशतः यह बातें जो होती हैं वह गाँव में ज्यादातर होती हैं। और दूसरा यह होता है उनको समाज का डर होता है, इसलिए वह जो है इन बातों को समाज के साथ नहीं बता पाती हैं। पुलिस थाने में जाना तो बहुत दूर की बात है, वह अपने नाते या रिश्तेदारों तक यह बातें नहीं बता पाती हैं समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा। इस वजह से महिला जो होती है वह अंदर ही अंदर इन हिंसाओं को सहन कर देती हैं और वह ये हिंसाएं जो होती हैं उसकी दैनिक जीवन का एक भाग बन जाती हैं।
2: दोस्तों, जहां एक ओर हमारे समाज ने पति को परमेश्वर का दर्जा दिया है, वही यहां भी हमारे समाज ने ही कहा है कि विवाह के बाद दो लोग जीवन साथी होते हैं और साथी का मतलब होता है बराबर होना। फिर क्यों यह बराबरी आज तक हमारे समाज में नहीं आ पाई?
3: दोस्तों, आज भी हम रोज के रोज नए नए केस न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे समाज में से ही बहुत बड़ी संख्या में पुरुष इन पोस्ट पर लाइक, कमेंट और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। पर जब खुद कभी अपने परिवारों में थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाए तो वही बड़ी बातें करने वाले पुरुष महिलाओं के लिए गंदी गालियों और अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं, तब उनकी सारी बातें एक पल में सामने आ जाती हैं।
2: बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। और क्या आपने कभी ये सुना है कि महिला को गुस्सा आया हो और उसने गुस्से में आकर अपने पति से गाली गलौज की हो या हिंसात्मक व्यवहार किया हो? नहीं ना, क्योंकि हमारे समाज में तो लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जबकि लड़कों को ये बात नहीं समझाई जाती, बल्कि उल्टा यह कहा जाता है कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे लड़के को गुस्सा आ जाए।
3: हाँ, और अगर किसी लड़के की गलती सामने आ भी जाती है तो बस फिर यही गुस्सा बहाना बन जाता है कि उसने तो गुस्से में आकर ये कर दिया। श्रोताओं, जब हमारा समाज ही बचपन से ऐसी छोटी छोटी सोच हमें देता आया है तो हमारी सोच स्वतः ही सिमटने लगती है और हम एक दायरे में रहकर ही सोच पाते हैं।
2: दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का चलन भी बहुत तेजी से युवाओं में आगे बढ़ रहा है, जिसमें लड़कियां भी बहुत जल्द बिना जांच परख कर किसी के झांसे में आ जाती है, जिसमें पहले शादी का झांसा दिया जाता है और बाद में ब्लैकमेलिंग और भी कई तरह से लड़कियों को डरा धमका कर उनके साथ हिंसा की जाती है।
3: इसके साथ ही साथ कई जगह ये भी देखने में आता है कि नौकरी का झांसा देकर भी महिलाओं के साथ यौन अपराध व अन्य तरह की हिंसा की जाती है। आजकल हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और खासकर लड़कियां, ताकि कल को वे किसी पर बोझ न बन सके, और इसी के चलते कई बार वे इस तरह के झांसे में आकर बहुत कुछ खो बैठती हैं।
2: साथियों, आइए अभी हम सुनते हैं एक कहानी जो एक लड़की की आप बीती दर्शाती है
3: और कैसे एक महिला बिना किसी गलती के भी हिंसा का शिकार हो जाती है।
4: मैं रीना साधारण से परिवार में पली बड़ी अभी 20 साल की लड़की हूँ। कॉलेज पढ़ती हूँ और सब टीचर मुझे कहते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊंगी, और गांव वाले तो कहते हैं कि पूरे गांव का नाम रोशन करेगी रीना। मेरी माँ दिन में खेती करके और रात में लोगों के कपड़े सिल के मुझे जैसे तैसे कॉलेज पढ़ा रही है। मैं भी पूरी मेहनत करती हूँ, दिन में कॉलेज और सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी और भाई की फीस जुटाती हूँ। मेरे पापा ने भले ही हमारी पढ़ाई को लेके कभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, माँ तो हमेशा से ही पापा से हमारी आगे की पढ़ाई को लेकर के लड़ती ही आई है। मैंने तो BSc में भी 85% नंबर से पास किया है। माँ बहुत खुश हुई थी उस दिन मेरे नंबर देखकर, आंसू आ गए थे माँ की आंखों में, लिपट कर रो पड़ी थी बेचारी। पूरे गांव में दाल के पकोड़े बना के बंटवाए थे माँ ने उस दिन, सब खुश थे। अगले दिन कॉलेज से घर आ रही थी। मेरे गांव से कॉलेज तक का रास्ता 2 घंटे का था। रास्ते में पूरा जंगल ही जंगल था। मैं तो गांव में अकेली लड़की थी जो कॉलेज पढ़ने जाती थी। माँ ने कहा था घर आते वक्त सब्जी भी लेते आना, मैंने सोचा आज माँ को कुछ अच्छा और कुछ खास खिलाती हूँ। मैंने पनीर ले ली और माँ को चट से फोन कर दिया कि माँ मैं पनीर लेके आ रही हूँ, तू तब तक मटर छील के रख दे, आज बहुत बढ़िया पनीर बना के खिलाऊंगी तुझे। भागी भागी घर जा ही रही थी, सोचा टाइम पर पहुँच कर जल्दी से खाना बना दूंगी और फिर माँ के साथ बैठकर कपड़े सीने में मदद करूंगी। घर जा ही रही थी, रास्ते में झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज सी आई। मैं पहले थोड़ा सा डर सी गई, फिर देखा कि ये तो अपने ही पास के गांव के मोहित और उसके दोस्त हैं। फिर थोड़ा राहत की सांस आई। एक दमदार आवाज में मैंने भी कह दिया, पागल हो क्या, डराने को मैं ही मिली थी, वैसे ही देर हो रही है, अंधेरा होने वाला है, चलो तुम भी घर को चलो। मोहित और उसके दोस्त झाड़ी से निकल आए और हंसी मजाक करने लगे। बोले, अरे तू तो कितनी डरपोक है, कॉलेज में तो बड़ी शेरनी बनी घूमती है। मैंने भी कह दिया, हाँ शेरनी तो मैं हूँ, पर अब ऐसे डराओगे तो कौन नहीं डरेगा। मोहित बोला, अच्छा शेरनी है तू, तो हम भी देखें ये शेरनी गाँव के शेरों से कैसे नहीं डरती। मुझे सुनने में थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने बात टाल दी और घर की ओर बढ़ी। इतने में मोहित के साथ वाले लड़के ने मेरा दुपट्टा खींच लिया और कहा कि चल अब बन से ले, ले अपना दुपट्टा ले, ले ले ले पकड़। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने अपना दुपट्टा लेने की कोशिश तो पूरी की पर दुपट्टा हाथ न लगा। और उनके लिए दुपट्टा हाथ न लग गया हो जैसे मैं ही हाथ लग गई हूँ। बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, बहुत हाथ जोड़े, पर किसी को मेरी आवाज़ न सुनाई दी। अंधेरा बढ़ता गया, मेरी माँ घर पर इंतज़ार कर रही थी। आज तो पनीर ले जाने वाली थी मैं, पर क्या पता था दुनिया से, समाज से लड़कर जिस बेटी को उसने अपनी थकी आँखों से बचपन में पढ़ाया लिखाया, वही एक पल में दरिंदगी की शिकार हो जाएगी। इस पर मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों समाज में शर्मसार होना पड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा भविष्य सब मानो चौपट सा हो गया। वो गांव वाले जो गांव रोशन करने की बात कहा करते थे, आज मुझे देख के हंसते हैं, बातें करते हैं तरह तरह की, कानाफूसी करते हैं। मैं तो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी।
2: दोस्तों, कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ बहुत हिंसा होती है, जिसके लिए भी अधिनियम 2013 में भारत सरकार ने कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा पर रोकथाम के लिए ये नियम लागू किया था कि जिस भी सरकारी अथवा व्यक्तिगत कार्यालयों में 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां पर एक महिला समिति का गठन होना अनिवार्य है,
3: और ये समिति कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा की शिकायत भी दर्ज करेगी और आगे की कार्यवाही के लिए महिला का साथ देगी। कार्यस्थल पर अक्सर महिला कर्मियों को प्रमोशन देने के बहाने, अधिक काम करवाने, मानदेय में कटौती या समय पर न देने के बहाने आदि से महिला को असहज महसूस करवाना, छूने की कोशिश करना या जबरदस्ती करना आदि सब पर यह कानून रोक लगाता है।
2: साथियों, हमारे समाज में विधवा महिलाओं या डिवोर्स महिलाओं या अकेली रहने वाली महिलाओं को अक्सर इस तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा गरीबी, बेचारा, शादी के वादे कर छोड़ जाना आदि कई तरह से महिलाओं को अपने झांसे में लाने का प्रयास किया जाता है।
3: दोस्तों, महिलाएं एक जमाने में कमजोर भले ही मानी जाती थी, पर आज के समय में महिलाएं न केवल मन से बल्कि शरीर से भी मजबूत हो रही हैं और आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। तो हम समाज के हर माता पिता और हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को चूल्हा चौका बाद में सिखाएं, पहले अपनी सुरक्षा करना सिखाएं, ताकि वे अपनी रक्षा घर और समाज के भेड़ियों से स्वतः ही कर पाएं।
2: तो दोस्तों, अब इसी मैसेज के साथ हमें आपसे लेनी होगी यहीं पर इजाजत कार्यक्रम समाप्ति की, ताकि अगले भाग में हम आपके लिए और भी सारी जानकारियां इकट्ठी कर ला सकें।
3: तो साथियों, अब अपनी दोस्त ममता
2: और मैं शूरवीर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 0120-4060-2050 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 एफएम आप सबसे अपील करता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंसा को नो कहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1800 111-6666 पर संपर्क करें।

दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: प्यार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। ए भाई, ए भाई, जरा

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है।

ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिनम विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराए। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं, तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। अरे सुनीता कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरु ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर नरी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
3: अब क्या सुनाए?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नाम और उनके संदेश।
1: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं।
0: कार्यक्रम में दलितों के मुक्तिदाता, आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक और बाल विवाह एवं अनमेल विवाह के प्रबल विरोधी ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायक व्यक्तित्व पर नाट्य प्रस्तुति ने दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा। आपकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद। प्रश्न का उत्तर है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी का। संदेश भेजते हुए लिखते हैं,
1: नमस्कार जी, हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से आपके इस मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम का बहुत आनंद लेते हैं। धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया जी का। आपने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, जलीय पौधों के बारे में जो जानकारी दी बहुत बढ़िया लगी। जो हमें पता नहीं था वो हमें उमंग कार्यक्रम सुनकर मिली और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसी आप महानुभावों से हम उम्मीद करते हैं।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। श्रोताओं, और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों को सुनने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्यमुखी फूल किस अवस्था तक सूर्य का अनुसरण करता है?
1: इसका उत्तर है साथियों, सूर्यमुखी अपने शैशव से लेकर युवावस्था तक सूर्य का अनुसरण करता है और परिपक्व होने पर पूर्व दिशा में स्थिर हो जाता है।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, ब्रह्म कमल पुष्प को देखना दुर्लभ क्यों है?
1: इसे देखना दुर्लभ इसलिए है कि अक्सर ये बहुत कम खिलता है।
0: जी,
1: यदि खिलता भी है तो असली फूल पत्तों के आवरण से ढका रहता है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा एक और प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था कि माउंट एवरेस्ट के दो नाम और बताइए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, माउंट एवरेस्ट के दो और नाम हैं, सागरमाथा और चोमोलिंगमा।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, नील कुरिंजी के फूल पिछली बार सन 2018 में खिले थे, ये अगली बार कब खिलेंगे?
1: नील कुरिंजी फूल क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद खिलते हैं, इसलिए इसके खिलने की संभावना अब 2030 में है।
0: आशुतोष, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया?
1: कमल को राष्ट्रीय फूल हमारे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया।
0: जी, तो ये थे हमारे द्वारा पूछे गए पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, ओडिशा के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: ओडिशा के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था?
0: जी, हमारा IVRS नंबर है 8800440559 और हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। आप हमें यहाँ अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें यानी CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए।
0: और श्रोताओं, आप प्रस्तुत हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विशेष रूप से बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि जीव जंतुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।
2: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास ले।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।

0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मयंक कुमार, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार सोहम, वान्या और लवीश, ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है शांति गीत।
3: इस सुंदर गीत में आह्वान किया गया है कि समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर रहें और परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए अच्छे नागरिक बनें। ऐसा करने से ही देश शक्तिशाली बनेगा और उन्नति करेगा।

0: शांति गीत अभी आपने सुना और इस गीत के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम नृत्यांगना सुधा चंद्रन।
1: इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध नर्तकी सुधा चंद्रन के जीवन के संघर्ष और कला के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय गाथा और योगदान का नाट्य रूप में वर्णन किया गया है। विशेष रूप से ये बताया गया है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं और लोगों के लिए महान प्रेरणा बन सकते हैं।
2: जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्र। पैर खराब होने के बावजूद वो चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश के लिए पहुंचे। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की।
3: बच्चे आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम सुधा है।
3: सुधा, वाह वाह, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा सुधा, आपकी उम्र क्या है?
4: मैं पूरे 5 साल की हूँ।
5: अरे बाप रे, इतनी बड़ी? हाँ, मुझसे भी बड़ी है सुधा।
4: आपको पता है मैं बहुत अच्छा नृत्य भी करती हूँ।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शीशे के सामने खड़े होके कभी नृत्य किया है?
4: हाँ, वो तो मैं हर जगह करती हूँ। शीशे के सामने, गार्डन में, स्कूल में टीचर नहीं करने देती।
3: कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें यहाँ नृत्य करने देंगे और तुम्हें नृत्य की शिक्षा भी देंगे, ठीक है? सिस्टर, इसका एडमिशन कर लो। सुधा बेटे, कल से आप यहाँ नृत्य सीखने के लिए आएंगे, ठीक है?
4: सच?
3: हाँ।
2: सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया।
4: मेरी टांग, ये मेरी टांग को क्या हो गया? ये तो बहुत दर्द हो रहा है।
2: उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं टांग में गैंग्रीन यानी एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाएं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाई टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ।
4: अब तो पैर में इतनी चोट लग गई है कि मैं नाच तो सकती ही नहीं, पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। यही ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई ही पूरी कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, क्या करूं? क्या मैं दोबारा नाच सकूंगी? छोड़ो ये सब बातें, मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूँ, सब फिजूल है। नहीं, पर मैं नृत्य को कैसे भूल सकती हूँ?

0: लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वो जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली।
1: ये पैर थोड़ा सा उठा, बस ज्यादा नहीं, बस ये स्टूल के ऊपर अपना पैर रखो, मुझे एग्जामिन करना। बस दैट्स इट, गुड वेरी गुड।
2: डॉक्टर साहब, मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना?
1: पहले एग्जामिन तो करने दो। अच्छा, ये एड़ी थोड़ा सा इधर करो। बिल्कुल, तुम बिल्कुल पहले की तरह सामान्य ढंग से चल सकोगी सुधा।
2: पर क्या मैं नाच सकूंगी?
1: चलने की नहीं, नाचने की फिक्र है तुम्हें।
2: जी।
1: हाँ भाई, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है।
0: डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा।
1: सुधा!
2: ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
0: कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी।
2: मैं कमजोर नहीं हो सकती, मैं नृत्य कर सकती हूँ।

0: जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली।
1: थोड़ा सा मूव करो पैर को, दर्द हो रहा है यहाँ पे? अच्छा मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, दर्द महसूस होता है? होता है? कितना? कितना? बस बस बस बस बस समझ गया मैं, समझ गया। तो समस्या ये है
2: डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं चलने लगूंगी, नाचने लगूंगी।
1: मैंने कहा था और मैं अब भी यही कह रहा हूँ। एक मिनट रुको सुधा, ये देखो नृत्य की तुम्हारी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने, ये देखो
2: ये तो
1: एक विशेष टांग बनवाई है तुम्हारे लिए, देखो देखो देखो।
2: पर
1: तुम इसे पहनो, पहनो इसे एक मिनट के लिए, फिर से इसको पहनो, पहनो पहनो पहनो पहनो पहनो पहनो पहनो अच्छी तरह से पहनो, गुड। स्ट्रैप करो, स्ट्रैप करो, बस बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया, स्ट्रैप कर दो, स्ट्रैप हो गया, हाँ टाइट है। अब जरा खड़ी हो जाओ, इसके ऊपर खड़ी हो जाओ, हाँ गुड, कुछ नहीं होगा, यू आर अ ब्रेव गर्ल सुधा, यहाँ खड़ी हो जाओ, गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सुधा, एक बात तुम्हें मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता था
2: जी,
1: मैंने कर दिया है, और अब तुम्हारी बारी है।
0: सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। January 28, 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन

0: दर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जब उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का ये प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वो रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उनकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई।
1: अंदेलु पिलिचिना पलिकिडिलो अणुअणुना अलगडुलो।
0: अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने ये फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम नृत्यांगना सुधा चंद्रन। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
3: और मुझे यानी विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: ईदी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी

0: खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नए अंदाज में सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी मॉनसून। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि समुद्र असंख्य जीवों और वनस्पतियों का घर है। जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी।

0: वसुधा, वसुधा कहाँ हो तुम?
1: रसोई में हूँ।
0: अरे सुना तुमने, मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अपने निश्चित समय से 2 सप्ताह पूर्व ही पहुंच गया है, यानी पकौड़े खाने का मौसम आ गया।
1: हाँ समझ गए, आप और आपके पकौड़े, बनाती हूँ पकौड़े।
0: गुड।
2: पापा ये मॉनसून क्या होता है?
3: लो पापा, इसे इतना भी नहीं पता। मॉनसून कहते हैं बारिश को, है ना पापा?
0: नहीं सृष्टि, बारिश को मॉनसून नहीं कहते, ये तो
2: बड़ी अक्लमंद की नानी बनती है ना, हर बात में बोलेगी जरूर।
3: रहने दे। पर पापा जब मॉनसून आता है तभी तो बारिश होती है।
0: नहीं बेटा ये जरूरी नहीं है। हाँ ये सच है कि बारिश सामान्यतया मॉनसून के आने पर ही होती है, पर हर मॉनसून के साथ बारिश हो ये जरूरी नहीं। जैसे हमारे देश में गर्मी के मॉनसून में तो बारिश होती है, पर जाड़े के मॉनसून में ज्यादातर देश के भागों में नहीं होती। हालांकि ज्यादातर लोग तुम्हारी तरह ही बारिश और मॉनसून को एक ही समझते हैं।
3: अब तब पापा ये मॉनसून होता क्या है?
0: अब देखो सृष्टि, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तार से तो पता नहीं है, पर ये एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो एक मौसम में महीनों एक खास दिशा में ही बहती रहती हैं।
2: हवाएं?
0: अरे सृष्टि बेटा देखो तो तेरा बाहर कौन है।
3: हाँ मैं देखती हूँ।

0: अरे पवन अंकल आप नमस्ते.
1: नमस्ते सिस्टर.
2: अरे पवन आओ आओ.
3: नमस्ते अंकल.
4: नमस्ते नमस्ते बेटा.
2: अरे आओ बैठो. आज इधर कैसे भूल पड़े भाई.
4: भाई सूर्य प्रकाश, मैं इधर से गुजर रहा था तभी याद आया कि बरसों से वसुधा भाभी के हाथ की चाय नहीं पी.
2: भाई वसुधा कहाँ हो तुम?
0: बोला तो रसोई में हूँ, पकौड़े बना रही हूँ, साथ में चाय नहीं पियेंगे क्या?
4: हाँ. देखो सूर्य प्रकाश, वो कहते हैं ना कि दाने दाने मेरा मतलब हर कप पर लिखा है पीने वाले का नाम.
2: अरे भाई वसुधा, ये पवन आया है तो चाय पीकर ही जाएगा, मानेगा नहीं भाई.
4: हाँ तो अब बताओ क्या हो रहा था मानव?
3: अंकल हम लोग मॉनसून के बारे में बात कर रहे थे.
4: क्या क्या क्या मॉनसून? जरा फिर से बोलो.
3: ये बुद्धू नहीं बता पाएगा अंकल, मैं बताती हूँ. पवन अंकल, पापा बता रहे थे कि अब की बार मॉनसून समय से कुछ पहले ही आ गया है. हम तो समझते थे कि मॉनसून का मतलब होता है बारिश, पर पापा कहते हैं कि ये तो एक तरह की हवाएं होती हैं.
4: सृष्टि, वैसे तुम्हारे पापा कह तो ठीक ही रहे.
2: थैंक यू.
3: तो अंकल इसका मतलब हम अब तक मॉनसून का गलत ही अर्थ लगाते रहते थे?
4: हाँ मानव तुम्हें क्या, अरे बहुत सारे लोग यही समझते हैं. दरअसल मॉनसून शब्द एक अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाएं. अरब सागर में यात्रा करने वाले नाविकों ने इस शब्द का चलन शुरू किया था.
2: हमारे ऋग्वेद में भी तो वर्षा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं.
4: हाँ सूर्य प्रकाश, और ये माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से भी 1200 वर्ष पहले हुई थी.
2: अरे प्राचीन काल में केरल में इन मानसून पवनों को काल वर्षा कहा जाता था.
3: इसका मतलब प्राचीन काल से ही लोगों को मानसून के बारे में पता है.
4: और नहीं तो क्या, ईसा की पहली शताब्दी से सन 60 के आसपास किसी अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई किताब पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में मानसून पवनों का वर्णन है.
3: पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी?
4: हाँ, पेरिप्लस कहते हैं नाविक की किताब को. और पहले के लोग लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर को एक मिले जुले नाम इरिथ्रियन सागर के नाम से.
2: पर पवन, अपने कवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में जो मॉनसून बादलों का वर्णन किया है वो कितना सटीक है ना.
4: हाँ सूर्य प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि उज्जैन में मॉनसून की पहली वर्षा आषाढ़ की प्रथमा को होती है, जो आमतौर पर 15 जून के आसपास पड़ती है. अरे भाई इस बात की सच्चाई को तो हम जैसे आज के मौसम विज्ञानी भी मानते हैं.
3: इसका मतलब मॉनसून एक प्रकार की हवाओं को कहते हैं, है ना पवन अंकल?
4: हाँ अब तुम ठीक समझे सृष्टि, वास्तव में ये एक प्रकार की तेज हवाएं ही होती हैं, जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है.
3: मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, वो कैसे अंकल?
0: फिलहाल तो पवन अपनी बातों की दिशा को बदलो और इस चाय और इन पकौड़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करो.
4: वाह वाह वाह, भाभी पकौड़ियां लाओ लाओ लाओ लाओ.
2: हां विवेक विवेक, तुम भी लो ना, बहुत देर से बैठे हो.
0: चटनी ले लो, चटनी ले.
4: हां जी. वाह क्या
0: शाबाश, मैं कढ़ाई गैस पर चढ़ी छोड़ आई हूं, पकौड़ियां अगर और चाहिए तो मांग लेना.
4: अरे मांग क्या लूंगा भाभी, दे ही जाना.
2: अरे इनको तो खत्म कर पेटू कहीं के.
4: भाई कुछ भी कह लो सूर्य प्रकाश, पर वसुधा भाभी की पकौड़ियां वाह वाह वाह. हाँ तो भाई कहाँ थे हम लोग?
2: पकौड़ियों में.
4: अच्छा पकौड़ियों में.
3: आप कह रहे थे कि मॉनसून एक प्रकार की तेज हवाएं होती हैं जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है.
4: हाँ सृष्टि, गर्मियों का मॉनसून जिसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून भी कहते हैं हमारे देश में जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है. इसी मॉनसून में हमारे देश में बारिश होती है.
3: अंकल तो क्या सर्दियों का भी मॉनसून होता है?
4: हाँ मानव होता है, पर सर्दियों के मॉनसून को उत्तरी पूर्वी मॉनसून कहते हैं. ये दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहता है. इस दौरान उत्तर भारत के अधिकांश भागों में आकाश साफ रहता है, बारिश नहीं होती और मौसम सूखा रहता है.
3: पर अंकल एक मॉनसून में बारिश और दूसरे में बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो जाता है?
4: देखो मानव, ये बात मैं तुम्हें यहाँ बता तो सकता हूँ पर यहाँ बिना नक्शे के तुम इसे ढंग से समझ नहीं पाओगे.
3: तो पवन अंकल
4: तब सृष्टि तुम कल, मानव और विवेक, हाँ तुम सब कल या फिर परसों मेरे विभाग में आ जाओ.
3: पर कल तो हमारी कोई छुट्टी है ही नहीं.
4: नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल के बाद ही आ जाओ।
3: हाँ ये ठीक रहेगा।
4: हाँ तो भाई कल की बात पक्की रही?
2: बिल्कुल
4: ठीक है। तो वसुधा भाभी और पकौड़ियाँ भिजवाना जरा।

0: नमस्ते अंकल,
1: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते, आओ सिस्टर, आओ मानव, आओ विवेक, बैठो बैठो। हाँ तो भाई, हम उस दिन किस बारे में बात कर रहे थे?
1: यही अंकल कि मॉनसून में बारिश कैसे होती है।
2: हाँ याद आया, तो उस दिन मैं बता रहा था मॉनसून के बारे में।
1: हाँ अंकल,
2: तो मानव, हर मॉनसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं।
1: वो कौन सी अंकल?
2: एक तो समुद्र के पानी के मुकाबले पृथ्वी सूरज की गर्मी को तेजी से सोखती है और जल्दी गर्म हो जाती है। मॉनसून बनने में दूसरी जरूरी क्रिया है धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
1: ठीक है अंकल, और
2: पानी की गुप्त ऊष्मा यानी कि पानी से भाप बनने में पानी वातावरण से ऊष्मा लेता है और भाप से पानी बनते समय उतनी ही ऊष्मा छोड़ता है। समझी सृष्टि?
1: कुछ कुछ अंकल।
2: अच्छा तो बताओ, क्या समझी तुम?
1: यही कि मॉनसून बनने की तीन मुख्य वजह होती है।
2: हाँ?
1: एक, जमीन का समुद्री पानी के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गर्म होना। दूसरा, धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
2: ठीक।
1: तीसरा, पानी से भाप बनते समय वातावरण से ऊष्मा लेना और भाप से पानी बनते समय वातावरण में ऊष्मा छोड़ना।
2: हाँ सृष्टि, इसके अलावा जमीन पर बहते समय घर्षण के कारण हवा की गति का कम हो जाना, हवा के रास्ते में पड़ने वाली रुकावटें जैसे पर्वत आदि मिलकर तेज हवाओं और बारिश की वजह बनती हैं।
3: पर अंकल, ऐसा क्यों होता है? धरती समुद्री पानी के मुकाबले क्यों ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है?
2: काफी अक्लमंदी का सवाल पूछा है तुमने मानो।
3: अंकल, मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, क्यों दीदी?
2: अच्छा सुनो, समुद्री पानी में एक तो सूरज की किरणें और गर्मी काफी गहरे तक चली जाती है, करीब 50 मीटर की गहराई तक।
3: 50 मीटर की गहराई तक?
2: हाँ, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। दूसरे, सागर के पानी की ऊपरी सतह गर्म होती है तो लहरें उसे नीचे के ठंडे पानी में मिलाकर और ठंडा कर देती हैं।
4: पर सृष्टि, जमीन पर तो ये गर्मी ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक ही जा पाती है। यहाँ पानी की तरह ठंडे और गर्म के मिलने का खतरा भी नहीं, इसलिए जमीन पानी के मुकाबले ज्यादा और तेजी से गर्म हो जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक।
1: इसका मतलब क्या हुआ पवन अंकल?
2: इससे गर्मियों में धरती की सतह के पास की हवा गर्म हो जाती है और ये हवा गर्म होने से हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तुम ऐसे नहीं समझोगी। अच्छा देखो, हाँ इस नक्शे को देखो।
1: हाँ।
2: इसमें ये ऊपर की तरफ इशारा करते लाल तीर,
3: ये वाले ना अंकल?
2: हाँ ये वाले, ये बताते हैं कि यहाँ से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है।
1: गर्म हवा बताने के लिए ही तीरों का रंग लाल रखा गया है ना अंकल?
2: हाँ, जैसे ही गर्म हवा के ऊपर उठने से यहाँ हवा का दबाव कम होता है, समुद्रों से ये जगह भरने के लिए समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा बहने लगती है।
1: पर समुद्र के ऊपर की हवा तो इतनी गर्म नहीं होगी।
3: मतलब समुद्र की सतह से ठंडी और नम हवा तेजी से चलकर जमीन की तरफ आती जाती है और वहां से आगे बढ़ती जाती है।
2: ठीक समझे तुम मानव। हवाओं का ये बहाव काफी तेज होता है, इन्हीं हवाओं को हम मॉनसून कहते हैं।
3: अच्छा, ये तेज हवा ही मॉनसून कहलाती है।
1: पवन अंकल, पर इन हवाओं, मेरा मतलब है मॉनसून से बारिश कैसे हो जाती है?
2: देखो, समुद्र की ओर से जो हवाएं जमीन की ओर बहती है ना, उनमें जलवाष्प या नमी बहुत होती है।
3: तो
2: जब यही हवाएं गर्म जमीन पर आती हैं, तो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। इस तरह ये हवाएं आगे बहते बहते ऊपर उठती जाती हैं और इनमें मौजूद यानी कि पानी की भाप।
4: हाँ मानव, पानी की भाप। जानते हो ना कि मॉनसून के समय में हमारे देश में पश्चिमी तट से घुसने वाली हवाएं अपने साथ करीब 7,500 करोड़ टन जलवाष्प समुद्र से अपने साथ उड़ा कर लाती हैं।
1: 7,500 करोड़ टन जलवाष्प?
2: हाँ सृष्टि, पर इसकी तिहाई यानी कि करीब 2.5 करोड़ टन जलवाष्प ही बारिश में बदल पाती है, जिससे पूरे देश में करीब 1.25 इंच बारिश हो सकती है।
3: सिर्फ एक दिन में इतना पानी उड़ाकर लाती है हवाएं अंकल?
2: हाँ भाई, जैसे जैसे ये जलवाष्प पानी में बदलती हैं, बादल बनने लगते हैं।
1: पर इनसे बारिश कैसे हो जाती है पवन अंकल?
2: भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है सृष्टि।
3: अलग अलग कैसे अंकल?
2: कुछ लोग ये मानते हैं कि जब ये बादल रास्ते में रुकावट जैसे कि पहाड़ आने पर और ऊपर उठते हैं जहां तापमान और कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद पानी की भाप छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है
3: और बारिश हो जाती है।
2: नहीं मानव, ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि ये हवा के साथ ही तैरती रहती हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे से टकराएं भी तो भी ये टकराकर अलग अलग हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं।
1: कमाल है।
2: हाँ सृष्टि, ये इसलिए होता है क्योंकि इनका आकार काफी छोटा होता है, एक मिलीमीटर का 50वां हिस्सा।
1: एक मिलीमीटर का भी 50वां हिस्सा, ये तो काफी छोटा हो गया अंकल।
2: भाई इसीलिए तो ये नीचे नहीं गिर पाती।
3: लेकिन अंकल, तब बारिश कैसे होती है?
2: बताता हूँ मानव, बताता हूँ। देखो, जब ये बूंदें बादलों में मौजूद कुछ कणों पर जमती हैं।
1: क्या क्या ये कण?
2: हाँ, इन कणों को बूंदों के केंद्रक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जमती जाती हैं ये छोटी छोटी बूंदें। आमतौर पर ये केंद्रक नमक के अति सूक्ष्म कण होते हैं।
3: नमक के कण? अब ये नमक के कण बादलों में कहां से आए?
2: क्यों, उसी समुद्र से जहां से ये जलवाष्प आई है। और एक लीटर मानसूनी हवा में करीब 10 लाख ऐसे बहुत छोटे छोटे नमक के कण होते हैं।
3: इतने सारे?
2: हाँ, इन्हीं कणों पर जमती जाती हैं ये बहुत छोटी छोटी बूंदें, जिससे बूंद का आकार बढ़ता जाता है। और जब इनका आकार 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से से आधे मिलीमीटर तक का हो जाता है ना, तो ये बादलों में नहीं रुक पाती
3: और बारिश हो जाती है।
2: बिल्कुल ठीक। पर भाई कुछ वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि बादलों में पहले बर्फ के छोटे छोटे रवे बनते हैं जो और रवों के मिलने से बढ़ते जाते हैं, फिर बादलों से यही बर्फ के बड़े रवे ही बरसते हैं जो धरती तक आते आते पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश हो जाती है।
0: बारिश? भाई पवन, ये कहाँ बारिश करवा रहे हो?
2: अरे आओ आओ गगन आओ। भाई मुझे अभी अभी सचमुच ये लगा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
0: क्यों भाई क्यों?
2: बताता हूँ। भाई पहले तुम्हारा परिचय तो कराऊं। सृष्टि, ये हैं हमारे विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक गगन शर्मा।
4: नमस्ते।
3: नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे।
2: और गगन, ये हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र सूर्य प्रकाश के बच्चे। ये हैं सृष्टि, ये विवेक और ये मानव।
0: वेरी गुड। पर पवन ये बताओ कि यहाँ इस बंद कमरे में आप बारिश किस उपलक्ष्य में करवा रहे थे?
2: भाई गगन, ये सृष्टि और मानव आज यहाँ मेरे बुलाने पर ही मॉनसून के बारे में जानने आए हैं।
0: ओ, तभी आपको लगा कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए। हा?
2: जी, क्योंकि आप इस विषय के विशेषज्ञ जो हैं।
0: भाई पर मुझे ये पता तो लगे कि आखिर यहाँ बातें क्या हो रही हैं। अच्छा सृष्टि, क्या बता रहे थे पवन आप लोगों को?
1: यही कि कैसे जमीन के गर्म होने से उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फिर उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से नम व जलवाष्प वाली हवाएं चल पड़ती हैं।
3: और फिर कैसे ये समुद्री हवाएं ऊपर उठती जाती है और ठंडी होती जाती है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है।
4: पर मानव, सर्दियों में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। जैसे गर्मियों में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसी तरह जाड़ों में ये जल्दी और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। पर समुद्र की सतह इतनी जल्दी और इतनी ठंडी नहीं होती और ज़मीन के मुकाबले गर्म रहती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
2: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक। अब ये समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने को ज़मीन के ऊपर की ठंडी हवा ज़मीन से समुद्र की ओर तेज़ी से बहने लगती है। इसे सर्दियों का या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं।
0: क्योंकि इस मानसून में जमीन पर समुद्र की नम हवाएं नहीं बहती, इसलिए इस मानसून से तमिलनाडु को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में पानी नहीं बरसता।
2: हाँ।
3: बिना बारिश का मानसून?
2: जी, तभी तो मैं कह रहा था कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता।
0: हाँ, यूं तो समझने की सुविधा के लिए मानसूनों को कई क्षेत्रीय नाम दिए गए हैं।
1: क्षेत्रीय नाम?
2: हाँ सृष्टि, जैसे नॉर्थ अमेरिकन, सब सहारा, अफ्रीकन, एशियन मानसून आदि। पर इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल और महत्वपूर्ण मानसून एशियन मानसून ही माना जाता है।
0: हाँ, माना जाता है कि ये करीब 5 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से सक्रिय है। हमारे देश पर जिस मानसून का सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे मैंने अभी अभी बताया।
3: वही बिना बारिश वाला मानसून।
0: हाँ, वही। और दूसरा पश्चिमी दक्षिणी मानसून।
3: पश्चिमी दक्षिणी मानसून?
0: हाँ मानव, जिसे ज्यादातर लोग मानसून की तरह जानते हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे समर मानसून या गर्मी का मानसून भी कहते हैं
2: क्योंकि ये जून से सितंबर तक यानी कि हमारे देश की गर्मियों में सक्रिय रहता है ना गगन?
0: हाँ सृष्टि, तुम ये तो जानती ही होगी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
3: ये तो मैं भी जानता हूँ।
0: हाँ मानव, इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है।
3: ये भी पता है मुझे।
2: और ये धुरी सूर्य की कक्षा से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है।
3: अच्छा।
0: हाँ, इसकी वजह से गर्मी की ऋतु में एशिया के दक्षिणी भाग, अरब सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्र, ऐसे नहीं समझ पाओगे। लो ये नक्शा देखो। हाँ। ये क्षेत्र।
1: अच्छा, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र।
3: और ये पाकिस्तान।
2: हाँ, और ये सऊदी अरब तक के क्षेत्र बहुत गर्म हो जाते हैं, खासकर हमारी और पाकिस्तान की सीमाओं पर 70,000 वर्ग मील में फैला थार का रेगिस्तान बहुत जल्दी और तेजी से तपने लगता है, जिससे यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। देखो यहाँ पर।
0: हाँ, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कम दबाव का ये क्षेत्र गंगा के कछार से बंगाल की खाड़ी तक फैलता जाता है। और ये इस नक्शे पर देखो मानव।
3: हाँ, ये देखो। ये गंगा नदी और ये बंगाल की खाड़ी।
0: हाँ।
3: ये तो लगभग पूरा देश ही आ गया इसके प्रभाव में।
0: हाँ। और इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए मेडागास्कर द्वीप के निकट से हिंद महासागर की तरफ से ठंडी और नम और जल वाष्प से लदी हवाएं बहने लगती हैं, जो भारत के दक्षिणी सिरे पर आकर दो हिस्सों में बंट जाती हैं।
1: दो हिस्सों में?
2: हाँ सृष्टि, अब हाँ इस नक्शे की तरफ देखो। एक तो केरल के तटीय भाग से देश में घुसती हैं और हिमालय पर्वत की तरफ बहती हैं। इसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा कहते हैं, समझे?
4: जब नमी से लदी हवाएं हिमालय की तरफ पहुंचती हैं तो हिमालय पहाड़ इनके लिए एक बहुत ऊंची दीवार का काम करता है। इससे ये हवाएं काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और काफी ऊंचाई पर पहुंचने के कारण इनमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी हो जाती है और प्रभावित भाग में तेज बारिश होती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
2: अरे वाह वाह वाह विवेक भाई, मान गया तुम्हें। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली?
4: कहीं पढ़ी थी अंकल।
2: अच्छा अच्छा, जो तुम्हें अब तक याद है भाई, वाह।
3: तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है।
2: बिल्कुल ठीक समझे तुम मानव।
1: और इस मानसून की दूसरी शाखा?
0: ये बंगाल की खाड़ी शाखा।
3: बंगाल की खाड़ी शाखा, वो क्यों
0: बेटे? क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर बहती हैं और इस दौरान बंगाल की खाड़ी के समुद्री पानी से इनमें और नमी भर जाती है।
2: फिर ये जैसे ही हिमालय की तरफ बढ़ती हैं तो उत्तरी पूर्वी भारत, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में तेज बारिश होती है।
0: हाँ, तो बेटे पूर्वी हिमालय के ढलानों पर मेघालय राज्य में एक जगह है चेरापूंजी।
1: वही चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है?
4: हाँ सृष्टि, वही। एक रिकॉर्ड के अनुसार 14 जून 1876 को चेरापूंजी में एक ही दिन में करीब 104 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। बारिश का ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक कहा विवेक तुमने। और हाँ, वैसे चेरापूंजी में साल भर में औसतन 1087 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
3: तब तो वहाँ रोज बारिश होती होगी, कितना मजा आता होगा ना?
2: नहीं माना, ऐसा नहीं होता। वहाँ की 2/3 बारिश तो जून, जुलाई और अगस्त में ही होती है। दिसंबर और जनवरी में तो वहाँ इतना कम पानी बरसता है कि नदी नाले सूखे रह जाते हैं।
1: पर अंकल, यहाँ पर इतनी अधिक बारिश क्यों होती है?
2: देखो सृष्टि, चेरापूंजी करीब 1500 मीटर ऊंचाई वाले खासी पर्वत के ढलान पर स्थित घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है।
0: हाँ, दक्षिणी दिशा से आने वाली मॉनसून इस जगह से सीधी सीधी टकराकर इस घाटी में फंस जाती है और वहीं बरस जाती है।
2: चेरापूंजी में ये पानी ज्यादातर सुबह के समय ही बरसता है।
3: सुबह के समय ही क्यों
0: बेटे? इसलिए कि इस घाटी में एक ओर तो उत्तर पूर्व से मानसून आती है तो दूसरे असम की ओर से दक्षिणी दिशा की मानसून भी आती है। खासी पर्वत के पास ये दोनों मानसून आकर मिलती हैं और रात भर घाटी में घिरी रहती हैं। सुबह होते ही ये पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, जिससे सवेरे के समय भारी बारिश हो जाती है। इसके अलावा एक और प्रकार

0: मानसून हवाएं यहाँ रहती हैं।
1: वो कौन सी?
0: उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ये सर्दियों में यानी कि दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहती हैं।
2: मध्य एशिया और साइबेरिया में सर्दियों में तापमान काफी कम रहता है, जिससे जमीन की सतह के पास की हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है। इससे वहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
0: हाँ, इसी समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और इंडोनेशिया में ये नक्शा देख रहे हो तुम?
3: हाँ हाँ, ये रहे दोनों देश।
0: ये भाग सूरज की किरणें सीधे पड़ने से गर्म होने लगते हैं और इससे साइबेरिया से हवाएं इधर की ओर बहने लगती हैं।
2: भारत में ये मॉनसून उत्तर पूर्व दिशा से घुसती है,
3: तभी इसे उत्तर पूर्व मॉनसून कहते हैं।
0: चूंकि ये जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए इसमें जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हमारे यहाँ के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहता है।
1: यानी कि ये ऐसा मॉनसून है जिसमें बारिश नहीं होती।
2: ऐसा भी नहीं है, हमारे देश में तमिलनाडु में ठंड की बारिश इसी मॉनसून से होती है। वैसे इस मॉनसून में श्रीलंका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ठंड की बारिश होती है, पर ये उतनी घनघोर नहीं होती जितनी गर्मी की मॉनसून की होती है।
1: अंकल, मॉनसून से हमें क्या फायदे हैं?
3: लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, बारिश से किसे फायदा नहीं होता।
2: हाँ, खासकर हमारे देश में जहाँ 80% बारिश तो मॉनसून की वजह से ही होती है। हमारे यहाँ करीब 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं और खेतों की सिंचाई का बड़ा भाग बारिश पर। कुछ जगहों पर तो लोग पीने के पानी के लिए भी बारिश पर निर्भर करते हैं।
0: तो बेटे, ऐसे में हमारे देश के लोग तो मानसून का बड़ी बेकरारी से इंतजार करते हैं। मानसून तो हमारे देश की आबादी की जीवन रेखा है, जीवन रेखा।
2: आम तौर पर गर्मी की ये मानसून श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के दक्षिण में मई के तीसरे हफ्ते में ही पहुँच जाती है।
0: हाँ, केरल के तट पर ये मानसून 11 मई से 18 जून के बीच पहुँचती है।
2: 10 जून तक ये मुंबई तक आ जाती है।
3: पर हमारे यहाँ तो बारिश जुलाई में होती है।
2: हाँ, जुलाई के पहले हफ्ते में ये मानसून उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुँच जाती है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में तो ये कश्मीर तक पहुँच जाती है।
0: तो इस तरह सितंबर अंत तक ये मानसून अपने पानी के भंडार को खत्म करके लौटने लगती है। इस तरह गर्मी के मानसून की भारत में कारगुजारी करीब 100 दिन तक चलती है। तो बच्चों, मुझे लगता है तुम्हें मानसून के बारे में काफी जानकारी हो गई।
4: जी अंकल, बस आपने सब कुछ बता ही दिया।
0: चलो,
4: अब हमें चलना चाहिए अंकल।
0: ठीक है, ठीक है, कभी लगे तो आना जरूर।
4: नमस्ते, बाय बेटा, बाय।
5: होगा कहीं इधर उधर, बाहर देखना, उसके पैर घर में टिकते ही कहाँ है। अभी तो केरोसीन का डिब्बा मांग रहा था मुझसे वो।
6: केरोसीन का डिब्बा?
5: हाँ,
6: फिर कोई खुराफात सूझी है क्या उसको?
5: तुम्हारी माया तुम ही लोग जानो, जरा देखना बाहर कहाँ है वो, कहीं आग वाग ना लगा दे।
6: हाँ।
5: देख जाकर, जल्दी से जा, जा।
6: मानव, मानव,
7: क्या है,
6: कहाँ हो तुम?
7: अरे यहाँ बाहर हूँ।
6: बाहर क्या कर रहे हो? और अभी तो केरोसीन का डिब्बा भी ले गया यहाँ से।
7: हाँ, क्यों
6: क्यों, ठहर जरा।
5: केरोसीन? ए मानव, केरोसीन से क्या कर रहा है तू? ये क्या, तू कूलर के पानी को खाली कर रहा है और गड्ढे के पानी में?
7: हाँ मम्मी, हाँ, कूलर में अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उसका पानी खाली कर दिया है। ज्यादा दिनों तक भरा रहता तो उसमें मक्खी मच्छर पनप कर बीमारियां पैदा कर सकते थे। गड्ढे के पानी में मिट्टी का तेल डाल रहा हूँ ताकि उसमें मच्छर ना पनप सके।
6: मानव, तू
7: बेवकूफ है, कह ना, कहे कहे।
6: नहीं नहीं मानव, तू तो समझदार हो गया
7: है।
6: आखिर भाई किसका है? मेरा ही ना।
7: भाई किसका है?
8: धरती मेरी धरती, अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी सुन रहे थे मॉनसून।
9: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है, तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
10: The world is here।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: महामारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महामारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महामारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महामारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।

0: करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: में यहाँ पे JEE-AS के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
2: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
1: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
3: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
4: पानी उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
1: बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें, JEE-AS रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाईकर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
2: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE-AS केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये।
1: एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
3: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। अच्छा सोचिए जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
3: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
2: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
3: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
2: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
3: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
2: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से लड़ने के लिए तैयार है।
3: क्या कहा तुमने?
2: Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
3: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
2: मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया।

0: मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। ओले ओले ओले शोनक। हेलो, कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
0: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
5: ब्यूटीफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसीरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव, टच बडी फ्रॉम द मूवी डेकॉय, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना, गाना बुझे कि नहीं।
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: चम्मा चम चम।
1: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
7: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की,

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियां हैं या यूं कहें कि कुछ भ्रांतियां हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियां और गलत फहमियां होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
3: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
2: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
3: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
2: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
3: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
2: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
3: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है।

0: भारत में लड़कियां हर महीने अपनी माहवारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: इंतजार नहीं करती। कृपया आप रास्ता देंगे?
1: प्लीज।
0: थैंक यू।
2: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
0: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
1: मालिका शरारती है।
2: वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, हम हैं आशा और आज हम आपको बताएंगे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को माँ की त्वचा के संपर्क में रखें। बच्चे को माँ के शरीर से लगाकर गर्मी देना बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। नवजात का वजन जरूर कराएं ताकि नवजात के वजन की जानकारी मिल सके। नवजात को जन्म के कम 7 दिन बाद नहलाएं। शिशु को हमेशा साफ कपड़े से ही पोछें। नाभि नाल को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। नाभि नाल पर तेल, पाउडर, राख, गोबर, हल्दी इत्यादि बिल्कुल न लगाएं। इससे इन्फेक्शन लगने से शिशु बीमार पड़ सकता है। बच्चे को सूखे एवं स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखें। माँ किसी कारण से बच्चे को अगर सीने से लगाकर ना रख सके तो घर का कोई भी और सदस्य उसको सीने से लगा सकता है। बच्चे को रात दिन 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पिलाएं। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही परिपूर्ण आहार है। इससे पोषण संबंधी सभी जरूरतें पूरी होती हैं और बच्चा बीमारियों और संक्रमण से बचा रहता है। माँ और परिवार के सदस्य शिशु को छूने से पहले हर बार अपने हाथ साबुन और पानी से अवश्य धोएं।
1: याद रहे, बच्चे का स्वास्थ्य और विकास आपके हाथों में है। अगर जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ सकती है बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी, क्योंकि सही तरीके से की गई सही देखभाल से फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा, गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
2: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
3: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें।

0: कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं? बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।